0: फल इजेके छ मम्मी त हेर्न आउँगले एक बा मु मगस गगलो मगस त बिरो त किन
1: ओके
0: कल गयम के आज नाम निकोले हे आज जिन मगस त नि को उच्च कि के गाल जुर त म स सर गा के नि त गबर गा के बेसे नि
1: हे
0: हे ला फले दिन गई त गन गा म आना आमे उतर त म स भी बोले जाय गले मारा गालिया आना आमे जा बोली न ओ गेली जा गुर कति को सिरिया लेली
1: ओई
0: कलियां की न्योर गिनी गा दिनी आलिया में न्योर गा दि मुतु लाग बे दिनी के रिबु लाग कति त सागा अगल आले दिनी आने तो अजब बहन घूम हमें तो हमें तय क्या लगे दस संगाले को वाला को सा लगे ना तो मगस तो ही मुझे तरता ही था ना गुना
1: इमाम
0: ये ना आवा ते अपला कोनो रा रा गाली आ गिले मो उतर तो मशा बिस कुंगा गुना गुना
2: आ यानी आगे कोई बड़े ना मशा बिस सभी इसको मालूम जी